जित वह सर्व संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावन हारे, केते तेरे राग परिस्यों कही है, केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म बिचारे, गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे।

गावन तुदनो जति सति संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुर्ग मच पयाले, गावन तुदनो रतन उपाय तेरे, अड़सठ तीरथ नाले, गावन तुदनो जोद महाबल सूरा, गावन तुदनो खाणी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे, से तुदनो गावन जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले।

गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद बिन सिद्धि किने न पाईया कर्म मिले ना ही ठाक रहाईया।

जिन दिन करकै कीती रात, खसम विसारह तेकम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जानू सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई।

मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत।

जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम, जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया।

निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतोह जी सब दुख विसारन हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा।

तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता, तेरा किया सब हुए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।

शरण परे की राघो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु। आप हाथ दै मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै। सब बैरन कौवा सुंदरिय पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याहूं। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे।

तुम हो पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा, नमस्कार किस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रण को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट पर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही तेरे।

अनाद असंभो ताका मूड उचारत भेदा जाको पिहिव न पावत वेदा ताका करपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पिव आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी पुत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निपट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मु सब होई दुष्ट छाह छव सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सुम्भारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई सुवैया।

मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जानियो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखाने हूँ। दोहरा सगल

ठाकुर का पयो जिसका सब सदारु जेको खावे जेको पुंचे तिसका हुए उदारु एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारु तम संसार चरण लग थरिये।

पौड़ी, जिथे तू समरथ जिथे कोई नाही, उथे तेरी रख अग्नि उदर माही, सुन कै जम के दूत नाए तेरे चढ़ जाहे, पाओ जिल बिकम सुगाहु गुरु सब दी पार पाहे, जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मह एहो पुन गुण।

सत्संग जी बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार जी बोधी पाचे दस प्रथम भगवती समर क्या है गुरु नानक लई त्या है फैनकर गुरते अमरदास रामदास से वैसे आए अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण की आई सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण उन्होंने आवा तो आए सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्रात्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पाता अर्दाते अंतर के घर से बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां चपियां चपियां जिन्हें नाम चपया वन चकिया दे चलाई ते वाहि देह के डिड़ कीता तना प्यार सत्यारा की कमाई देते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगड़िया धर्मे सी दिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लाइया चरखड़िया से चढ़े आ रहे न चाहे गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की अंतर नहीं आ रहा से किसी देखे सत्संग निभाया तिना नहीं कमाई देते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। पंजा गुरुद्वारे देते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चेता है चेत आवण का सर सुख हो जहां जहां गुरु खाते साहब तरह देखते कि फतेह बिर की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा सिखी दान केस दान दैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बूंगे जुगल अटल धर्म क्या जाएगा बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत सुची मत फत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की प्रवाज पंथ सदा शाह दार जी हो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दार से सेवा संभाल सदा अपने खालसा जी बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया आसरे गुरु धन धन गुरु दार जी दोए कर जोड़ करो अरदास तुझ भावे तो आने रास हे गरीब नवाज जी आप जी के चरण कामना दरदास बख्शी की है अद जाना पितृ गुरबाणी सुखड़ी साहब ने संपूर्ण पाठ दिता इस वे संध्या समय जान के आदि जाना सोर दर रह रास साहब के पाठ की तरह कृपा करो भूइया भुलर चुकानी बाही बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच कर प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतान की हेतु नुकसान की बात करो जी अगो तो शुद्ध पित्र बाणी ध्यान बड़ बुद्धि बख्शिश करो भी आज इस खुशी विच आप दिया बख्शियां दातों विचों पित्र गुलाब साहब देखा त्याग कर हाथ दता आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सत्संग ग्रस्त लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पित्र राम जप बख्शिश करो दता दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश पदे रखा बख्शिश करो जी। गरीब नवाज आप दिन बख्शिया दातों जाना कराए तुट सवार प्रवानी करनी दतार बख्शिश करो आप चरणा सेवा कर रहे सारे टैलिया सिंह सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कला बख्शो अच्छे सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शन पालता करो। गरीब नवाज कृपा दतार जी सब सचे पातशाह जी आज दर कर सेवादार श्रीमती मीता कोहली ने जन्मदिन की खुशी में बेहद माया आप चरणा सेवकों भेटा आई दार प्रवान करो बख्श कर दिया मीता कोहली तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो तुम कि नाम जा रहे हो दार चारदी कला बख्शा प्रार्थना करो उसका चहरी कला बख्शा करो दार सेव कर सारे परिवार जी तंदुरुस्ती चारदी कला करनी कमाइया सफल कर दरते आप राजभार खो जी कृपा करो जी रुवाज अमृत वेले तो लैके दरते आइए सात संगतान की आजीव दर प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ संगतान दरते तेल फुल पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु की बुलाई कृपा करो खालसा पंथ सिख कौम एकता स्वागत है आदि बख्शी करके सत नोए दास बख्शो चानना जोड़ो गुरबाणी का पैरों हार हर मैदान दुआन फतेह बात करो जी। गुरु की बुलाई दूर दराज कारण बैठी लाइफ तकी तो श्रवण करिए सारी संगत हाजिर प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ सारा आपकी कृपा की संगत रुद बख्शे संगत आपके चरणा धनवाद करने शुक्रिया अदा करना बेहद माया आनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा सिंगल दर संगत माया पेटा कर ही चरणा प्रवान करो बच्चा दिन कमाइया सबल गुरु कार साहब संगत दिन शुभकामना सबल पूरी करो जी दर मेहरान कराओ सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो पितर खुना बख्शे प्रण अज दिशा की कथा गीत बारे अमता वास्ते आगा बख्शो रेंदे कार सवार के चरण सुना दिनाओ शुद्ध से पितर सेवा लाल की बात देता सही प्यारे मेरे दिल में आपका नाम लेता है नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਜਲਾਯੂ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ।

हेठ हजूरी अंदर गुरु की साजी अते निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी सतगुरु जी दा खास रूप सुंदर स्वरूप साध संगत जी बहुत वड्डियां भागां वाले ओ सतगुरां दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर के सतगुरु जी दी अमृत बाणी सरवण करके बख्शे होए जिंदगी दे सवासां फलां नूं गुरसंगत जी गुरु शब्द द्वारे सफल बनाउण दा सफल जतन कीता है। वाहिगुरु निरंकार जी ने अपने दस स्वरूप धारण करके वाहिगुरु निरंकार जी ने अपने दस स्वरूप धारण करके सर्व जीयां दी कल्याण करन वास्ते जिथे मेरे सतगुरां ने जी बेअंत बेअंत बेअंत कौतक कीते ने उथे नाल दी नाल गुरमुखो साडा कलयुगी जीवां दा भला करन वास्ते सतगुरु जी ने अमृतमई गुरबाणी दे

जीवन वाज तू सच्चा है, जुगो जुग टल है सचियार है। ता जेडे जीव सतगुरु जी दी हजूरी अंदर आ जांदे ने ओ भी सचियार हो जांदे ने। तुहाडे वास्ते बोल ने जिथे गुरु सचियार है प्रेमी प्रेमी भी सचियार ने। सचियार सिख बैठे सतगुर पास, कूड़ियार ना लभनी कितै थाए। भाले झूठिया का टिकाणा थोड़ी है, इथे ते सचियारां दा सचिया टिकाणा है। ता ही ता महाराज कहिंदे केव सचियारा होई है, केव कूड़ा है टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। गुरु दे हुक्म द्वारे चलिए ता कूड़ दी पाल जिहड़ी है वह टुट जांदी है। वो सच वरता रहा है, उस मेरे वाहिगुरु जी का सच्चा हुक्म वरत रहा है। जुगो जुग अटल है, संसार नाल गौ नाल वेख्या जावे ता संसार विच कोई जुगो जुग अटल नहीं है। अते केवल मेरे गुरु का हुक्म जिहड़ा है वो ही संसार विच वरत रहा है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। एक गल चेता हो रखो, ता हुक्म जो वरतदा है मनुख दे जोर नाल, अपनी ताकत नाल, अपने जोर बल हुक्म नाल कदे भी कुछ नहीं हो सकता। सोडी सुल्तान सचे पातशाह जी दे अमृत बचन ने, कीता करना सर्व रजाई, जो कीता है जो हो रहा है वाहिगुरु ये तेरे हुक्म अंदर है, सानू हुक्म मनन दी जाच आ जावे। कीता करना सर्व रजाई, किश कीचै जे कर सकी है, अपना कीता किशु ना होवै, ज्यो हर भावै त्यो रखिए, मेरा हर जियो सबको तेरा वस। असा जोर नाही जे किश कर हम साके, ज्यो भाव है तेवें बख्श। जिवे तुहानू पौंदा है ना, हे मेरे गरीब नवा सानू बख्श लो, बस आई बेनती है ज्यो।

0: पालना होई बिंब बिना कैसे
1: कपड़े तो ही बिंब नाम है पानी का जी, सारा कुछ कोल ही होवे तो पानी तो बिना कपड़ा धुपदा नहीं है। जैसे जल धोए बिन अंबर मलीन हो, तो मैं एक बिंत सुनाया सी तीन चार दिन हो गए अज उधर नहीं जाना। कहिंदे पानी तो बिना कपड़ा नहीं धुपदा, तो मात पिता तो बिना बाल पैदा नहीं हुंदा। तां महाराज कहिंदे उहदा ना मां है ना बाप है, वह अपने आप तो आप ही है। हुण अगे होर स्पष्ट करनगे जे
2: ना तैस रूप ना रेख वर्ण सबाया।
0: सतनाम श्री
2: वाहिगुरु।
0: जिहड़ा मां बाप तो पैदा होवेगा तो जो मां बाप का वर्ण है उहदा भी वर्ण होवेगा। आम जदो बच्चा जन्म लैंदा है कहिंदे जी मां वर्गा के बाप वर्गा जां किहदे वर्गा, किहदे वर्गा दा रूप रेखा किहो जी है, उहदे किते जांदे सारा कुछ वेखदे ने। महाराज कहिंदे ना जी ना, जे उहदा मां बाप नहीं है ते उहदा वर्ण भी कोई नहीं है ते उहदा रूप रेखा भी कोई नहीं है। इहो ही गल तां गुरु नानक अर्जन देव महाराज ने कही है। सोलहवीं अष्टपदी तुसीं पढ़दे हो, उहदा सलोक की है, रूप ना रेख ना रंग केशो त्रिहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवै
2: सो प्रसन्न।
0: ए समझो नू होदी है जिहदे ते गुरु कृपा कर देवे, नहीं ते गुरु नू आम बॉडी मनदे ने। गुरु एक शरीर नहीं है, वह जोत है, वह प्रकाश है, अपनी जोत महाराज पाउंदा है। ताही तां कहिंदे जोत ओहा जुगत
2: साई,
0: वह जोत है। जां कलगीधर पातशाह जी दे बोल पढ़ लो, चक्कर चिहन अर वर्ण जात अर पातन हिण जाए रूप रंग अर एक भेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणजय तरुपवन महीप सुर न

पावन शब्द आपने यानी श्रवण किया बाबा फरीद साहब जी, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। श्लोक बेशक दो पंक्तियां दा है पर इसनू कोई विरला कमा सकता, कोटन में को करोड़ा विच महाराज कह रहे हैं नारायण जय जी। जेड़ा स्वास स्वास जपदा होवे, बाबा फरीद जी कहंदे ने जेड़े रब दे बन गए फिर सारी दुनिया ही ओदी बन गई, क्योंकि ओदी मर्जी विच किसी दी मर्जी चलदी नहीं। आओ बड़ा प्यारा बचन, नाम तेरे की आस मन तारी, मूर्ख मुगद अज्ञान अविचारी। सतगुरु असी तां मूर्ख हां, कलजुगी रंगा दा पदार्थां दा साडे ते ज्यादा असर है, तेरे नाम दा बड़ा घट असर है। भाई सतनाम सिंह जी साडे हजूरी कीर्तनी है, उन्हां वल्लों पावन शब्द दा हुक्म होया। बड़े प्यारे वचन ने, एक एक पंक्ति गुरु अर्जन देव जी दी पावना है। हालांकि गुरु नानक दे घर दे मालक ने, निरंकार दा रूप ने, पर निम्रता सहनशीलता वेखो कैसी है। अपने आप नूं अग्गे रख के कहंदे मैं एक एक पंक्ति सुनिया, करो कृपा।

तेरे नाम विच बख्शिश पावर है, रहमत है। हर दुख का इलाज भी तेरा नाम सचे पातशाह, हर सुख का इलाज भी तेरा नाम। वो सुख भी कई बार दुख बन जाते ने जिन्हों सुखा विच महाराज का शुकराना है। वो तां बन जाते ने भी लैण वेले नेता प्रति महाराज नू याद कीता, सेवा कीती, चल के भी आया, भाग लग गए, दात प्यारी विसरिया दाता। कदे भी वेख लेना साढ़े वर्गियां दा यह हाल है। मंगण वेले मन की अवस्था कुछ होर है, जदों भाग लग गए फिर दात नाल जुड़ गए। महाराज कहिंदे ने दात विच्चों दाते नाल जुड़ना, पुत्र की दात है। पुत्र नूं वेख वेख के शुकराना गुरु का करना है। सतपुरशां दे वचन ने बच्चे का नाम हुक्मनामा लैके रखण दा यही तां मतलब है। ऐ गुरु ग्रंथ साहिब जी, तेरी बाणी विच्चों मैं अपने बच्चे का नाम तां रखिया, आवाज पुत्र नूं लावां, तेरी बाणी दे बोलां नाल मेरी रसना हरी भरी हो जाए। आवाज मैं बच्चे नूं लावां पर तेरे बोलां वचना नाल मेरी रसना पवित्र हो जाए। महाराज कह रहे ने गुरु अर्जन देव सचे पातशाह राग तनासरी महला पंजवा, हम ते किछू ना होए मेरे स्वामी, साडे बस विच कुछ भी नहीं, स्वास भी असी अपनी मर्जी नाल नहीं लै सकते, आप ही चल रहे ने। सानू इन्ना क बस उद्दम दिता बुरकी तोड़ के मुख विच पाउणी, अगे तां सिस्टम उहने बनाया ना, अगे बंदा कदे सोचदा नहीं। जदों पूर्ती पेट दी हो गई कहिंदा बस करो। जे बंदा अगले सिस्टम बारे किवें पचेगा हुण की बुर की कहिंदे, उसे दिन सिस्टम विगड़ जाएगा। कुछ बख्शिशां सानू उद्दम करन लई दित्तियां ने, महाराज कहिंदे ने इह वी उद्दम ही है। सत्संग विच आउणा, उद्दम करना, मेरे मन नू जोड़न वाले तेरे बचन ने, तेरी बख्शिश, तेरी नदर हेठ जिहड़े आ गए। इंज कह लईए, कह कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। तेरी संगत विच तेरे घर विच ऐसी बख्शिश है दातिया, सानू पापियां नू भी जिवें लकड़ नाल लोहा तर जांदा है ना, सियाणे कहिंदे ने डुबदा नहीं, इवें आपां तर जावांगे। गुरु दे शब्द विच ऐसी पावन है।

नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ कल कलेश तन माहि मिटावौ सिमरौ जास विषम पर एकै नाम जपत अगंत निकै।

ध्वनि न आवे। कांकी एक दर्श तुहारु, नानक उन संग मुहे उदारु। सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन विनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरह जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते उचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मुचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाय, अमृत नामृत माही समाये। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दर्शन दसना। प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते। प्रभ को सिमरह से जन परवान,

प्रभु को सिमरै सी सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए, हर सिमरन पाए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक

नानक कहू न सी जई बिन नावै पथ जाय अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्तु कारण बिखोट गवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तो मूढ़ा कौ का करे। जिस ठाकुर से नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सूखता हो मन उठा जिस जने अपना हुक्म बनाया सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंत साहू अपनी दे रास खात पीत बरतै अनद उलास अपनी अमान कछ बाहुर साहू ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीताप ही कोवे बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्ती से आज्ञा राखै प्रभु की आज्ञा मानै माथै उसते चौगुन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिर की छाया सो रंग लावै ओ बिन सहु मन पछतावै। जो दिसै सो चालन हार लपट रहो तै अंध अंधार बटाऊ सो जो लावै नेहि ताको हाथ न आवै केहि मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अशुभस्तरा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या सुपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है मिथ्या नित्र पेकत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कौताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल दे नानक हर हर नाम लय वृत्ति सागत की आर जा साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन वृथा बिहाये मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन वृथे सब काम ज्यो कृपन के निरारत दाम धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछवर कमावत मनी प्रीतम खो गंडलावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेद न काऊ भी नवर उपदेश आप न करै आवत जावत जन्मै मरै। जिसका अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम पानी तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपह मानै आपह आप आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव से आनु सगल ते रहत सब कर जाने आत्म की रहत जिस पाव तिसले लड़ लाई थान थनंत रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक। काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहि तिस ठाकुर को रख मन माहि। जे प्रसाद सुगंधत तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै। जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याकत अवर लुभावै। जे प्रसाद सुख से सुविजय मन आठ पैरता का जस गाविजय। जे प्रसाद तु सब को मानै मुक्ता को जस रसन बखानै। जे प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जप दर गहमान पावै नानक पत छेती कर जावै।

0: अंग स्थित मन पावे।
1: साधक संग माया ति भिन्न,
0: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न,
1: साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत,
0: साध संग किस्यो नहीं बैर,
1: साध के संग ना भीगा पैर,
0: साध के संग ना ही कुमंदा,
1: साध संग जाने परमानंदा,
0: साध के संग ना ही हो तापू,
1: साध के संग तजै सब आपू,
0: आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई।
1: साध के संग ना कबहू तावै,
0: साध के संग सदा सुख पावे,
1: साध संग दस्तगु चिर लह,
0: साधु कै संग अजर सह,
1: साध के संग वसै थान उचै,
0: साधु कै संग महल पहुँचै,
1: साध के संग दिड़ै सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
1: साध के संग पाए नाम निदान,
0: नानक साधु कै कुर्बान,
1: साध के संग सब कुल उदारै,
0: साध संग साजन मीट कुटम निस्तारै,
1: साधु कै संग सो धन पावै,
0: जिस धन ते सब को वरसावै,
1: साध संग धर्म राय करे सेवा,
0: साध कै संग शोभा सुर देवा,
1: साधु कै संग पाप फलायन,
0: साध संग अमृत गुण गायन,
1: साध कै संग सब थान गम,
0: नानक साध कै संग सफल जन्म,
1: साध कै संग नहीं कछका हाल,
0: दर्शन भेटत होत निहाल,
1: साध के संग कलुकत हरै,
0: साध के संग नरक पर हरै,
1: साध के संग इहां उहां सुहेला,
0: साध संग बिछुरत हर मेला,
1: जो इच्छै सोई फल पावै,
0: साध के संग न बिरथा जावै,
1: पार ब्रह्म साध रिद बसै,
0: नानक उदरै
1: साध सुन रसै,
0: साध के संग सुनो हर नाओ,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मन ते बिसरै,
1: साध संग सर पर निस्तरै,
0: साध के संग लगै प्रभु मीठा,
1: साधु के संग कट कर डीठा,
0: साध संग कहे आज्ञाकारी,
1: साध संगत भई हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध भेटे संजोग,
0: साध की महिमा वेद न जाने, जीता सुनह तेता बखियाने,
1: साध की उपमा ते गुण ते दूर,
0: साध की उपमा रही भरपूर,
1: साध की शोभा का ना ही अंत,
0: साध की शोभा सदा बेअंत,
1: साध की शोभा ऊंचते ऊंची,
0: साध की शोभा मूछते मूछी,
1: साध की शोभा साध बने आई,
0: नानक साध प्रभेद न पाई।
1: श्लोक मन साचा मुख साचा सोए,
0: अवर न पेखै कुछ बिन कोए,
1: नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो।
0: अष्टपदी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक,
1: जैसे सूर सर्व कौशोक,
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृढ़ समान,
1: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक,
1: ज्यो बसला को खुद को चंदन लेप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ,
1: नानक ज्यो पावक का सह स्वभाओ,
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला,
1: जैसे मैल न लागे जला,
0: ब्रह्म ज्ञानी का मन हुए प्रगास,
1: जैसे तारू पर आकाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के ना ही अभिमान,
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा,
1: मन अपना है सब ते नीचा,
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे,
1: नानक जिन प्रव्याप करे,
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना,
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना,
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत बरसी,
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता,
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह,
1: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह,
0: ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह वो सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग

ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सुदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी कांत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी काओ सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक पुर धारै जो अंतरनाम, सर्व मैं भिखै भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक अपर सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शु, पर त्रै रूप न पिक है नित्र, साध की टैल संत संग हित, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा परस, वैष्णो सोजी सुपर सुप्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए नि कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप जड़ै अवरह नाम जपावै, नानक वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरमु, कर पूजै सगल पार ब्रह्मु, सास पापा मलकु वै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टैल करै नित नीत, मन तन अर्पै विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम अतम में सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नयावै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सुख में जाने स्थूल, चौवरना को देव देश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासं पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उतारै, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै, सर्व लोका उखद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहु जुगत कितै न पाइए धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, तू आत्म राम तिस निद्री आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जानु, सो दास गर्गै परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परे, सगल संगा तुम उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा हरख तैसा सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर

अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहि निहाल। श्लोक पुस्तक करे अनेक जानु अंत न पारावार नानक रचना प्रभु रचि बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सरोते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कंत न पावे कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेगातम निकोर कई कोट पर दर्व को ही रह कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाहे कई कोट पर देश परमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर वृख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्य सूर्य नक्षत्र कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत धार है नानक जी जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शास्त्र कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट चक्की नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच सब ते नीरे सबूते दूर नानका बलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुग निवासी कई कोट जन्म जीवे मरे कई कोट भोजूनी फिर है कई कोट बैठत ही खाए कई कोट काल थक पाए कई कोट कीर्तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नानक सब किस प्रभ कह हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संगति लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होया आपसो प्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्थार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक कंकार कई कोट कीने वपात प्रभते हुए प्रभ माहि समात ताकांत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तुम प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पै सत सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ संभारे नानक कोय परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार नै जल थल मही अल सोए अष्टपदी करण करावन करण है जोग जो तिस भावे सोई होग किन मैं तप थापन हारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार अतर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी विडयाई नानक सब मैं रिहा समाई प्रभावै मानुख गत पावै प्रभावै ता पाथर तरावै प्रभावै बिन सास ते राखै प्रभावै ता हर गुण पाखै प्रभावै ता पतित उधारै आप करै अपन विचारै दुहां सिरियां काप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या हुए आवै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ हुए ता सब किचले जो तिस भावै सोई करे अनजानत बिखिया में रचै जे जानत आपन आप बचै भरमे भूला दह तिस धावै निमक माहि चार कुंट फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेज नाम मिले इन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु नाया वै तिस तत्काल दह तिस प्रगटावै जाको अपनी करै बुकसीस।

ताका लिखा न गने जगदीश जीव पिंड सबदिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बलना ही सहात करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो ज्योतिष पावे सोई फुनतियो कबहू ऊंच नीच में बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू खूब आकाश दयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला बनहार कबहू नृत करे बहुपात कबहू सोए रह दिन रात कबहू मां क्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल कबहू हुए बह बड़ राजा कबहू पेकारी नीच का साजा कबहू अपकीरत में आवे कबहू भला भला कहावे ज्यों प्रभु राखै तिब ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावे ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग हो जिया अनिक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे ज्यों प्रभु पावे तिवै निचावे ज्योत सुभावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कबहू सा संगत पावे उस स्थान ते बौर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत नामृत एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जले आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्किनी आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतराज अभिमान सो नरक पाती होत स्वान जो जाने में जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहावे जन्म मरै बोजोन परमावे धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानक यहाँ मुक्ता गै सुख पावै धनवंता हुए कर गरबावै तिन समान का संग न जावै बोलस कर मानुक ऊपर करे आस पल पीतरता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाजा का मिटे अभिमान सो जन नानक दर गय परवान कूट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नर स्वरूप फिर अवतार अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेंजा का मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जाबे जाने मैं किच करता तब ला गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चरना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाई तब लग धर्म राय देश सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक कहो छूटे सहस कटे लाकूट तावे तृप्त न आवे माया पाछ पावे अनिक भोग विख्या के करै न त्रिवतावे खप कमरै बिना संतोग नहीं कूरा जय सुपन मनोस वृथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख हुए बड़ भागी किसे प्राप्त हुए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप आप प्रभ सोए जो किछ किन्नो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बुझे दिखे करे बबेक अपै कपै अनेक

वाप किन्नु वापन विष्टात। सब कछ उसका उकर नेहार, उसते पिन कहो किछ होई, थान थनंतरी कैस होई, अपने चलताव करने हार, कौत कर रंग अपार, मन मया मन अपने माई, नान कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वकियानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किन बिरले चीना, भला भला भला तेरे रूप सुंदर पार रूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी, घट घट सुनी श्रवण बकियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत शरण जो जन पर है सो जन उतरण हाथ, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार, अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जम तेनी छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मैं पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा तेहीन, संत के हते को रखै न कोई, संत कै दुखन तान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संसंग निंदक भीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जून लवै, संतन कै दुखन सर्प जून पाए, संत कै दुखन त्रिग जून किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै, संत कै दुखन सब कुछ चलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का ताव को नाहि, नान संत पावै तो पीगत पाए, संत कैंदक मात ताई, संत कैंदक टिकन न पाई, संत कैंदक महत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत के निंदा दुख में दुख, नान संत पावे तस्का भी हुए मोग, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसै का निमित, संत के दुखी को डान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन मै मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही टाओ, नान संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अत बीच ते टूटे, संत का दुखी कितै काज न पहुँचे, संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थूता, जो सास बिना मृतक की लोता, संत के दुखी की जड़ किछ नाहि, अपन बीजा पे ही खाहि, संत के दुखी कवर न रखन हार, नान संत पावै ता लै उबार, संत का दुखियों बिल लाए, जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, जो पाव किंदर नहीं त्रापै, संत का दुखी चिट्टै केला, जो बुआड़ तिलके तुमाहि दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तुस पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजे न आसा, संत का दुखी उचल निराशा, संत का दुख न तृष्ठ कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, वह कृत न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब कट दिस क्यों करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तुति करो दिन रात, सहते आओ सास विरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना केला करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनों कृपा करे तिसा अपन नाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोक, तजो सियान सुरजन हो, सिमरो हर हर राय, का सहर मन रखो, नानक दुख परम हो जाए, अष्टपदी मानु की टे

मारे रखे को आप मान के कुछ नहीं आत। जिसका हुक्म भू सुख होए, जिसका नाम रखंठ पर होए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन लागे कोई। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहिला कर लह जियो। नैनो पेक ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उज्जल मत्था, बड़ भागी ते जन जग माही, सदा सदा हर के गुण गाए। राम नाम जो करह विचार, उसे तनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पहचान, तुत की ओ सूझी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक जिन्हें निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपन आप सुजय, तिसकी जानो तृष्णा बुझय। सास संग हर हर जस कहत, सर्व रूप त्योहार जन रहत। आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिसन की आशा, तिसकी कटिए जम की भाषा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चिते आवे, शोषण सुहेला नहीं डलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डराए, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद ता सब बुझिया, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुकम सोई सूल। न किछ जन्मे न किछ मरे, अपन चलता पे ही करे, अवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट। आपे आप सगल मैं आप, अनेक जुग त्रय ताप ताप, अविनाशी नाहीं किछ खंड, धारण धारहु ब्रह्मंड। अल कपे पुरुष प्रताप, आप जपाए था नानक जाप, जिन प्रभु जाता सो सुभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभु के सेवक सगल उदारण, प्रभु के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल, गुरु का सब जपै निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करह बड़ भागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरुष को उत्तम कर मान, जो किछ करह सुब्रभ कह रंग, सदा सदा बसै हर संग। सह सुभाय हुए सो हुए, करने हार पछाने सोए, प्रभु का किया जनवीट लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माए समाये, सुख निदान नूह बने आए, आपस को आप दिन मान, नानक प्रभु जन एको जान श्लोक। सर्व कला भरपूर प्रभृता जानन हार, जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार। उष्टपति टूटी गाडन हार, गोपाल सर्व जी आया पे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाही, रे मन मेरी सुधा हर जाप, अपना सी प्रभ्या पे आप। आपन किया कछु न होए, जिस उपरानी लोचै कोई, तिस विनाही दे रह किछ काम, गत नानक जपे कर नाम। रूपवंत होए नाही मोह है, प्रभु की जो सगल गठ सो है, धनवंता होए क्या को गर्भ है, जा सब किछ तिसका दिया दर्भ है। अथूरा जी को कहा वह, प्रभु की कला बिना कहता वह। ये को हुए वह दातार, तिस दिन हार जाने गा बार, जिस गुरु प्रसाद उठे हो रोग, नानक सूजन सदा अरोग। जो मंदिर को थामे थमन, त्यों गुरु का शब्द मने स्तंभन, जो पाखान आप चढ़त रहे, प्राणी गुरु चरण लगत निष्ठर है। जो अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन हुए विगास, जो माव ध्यान में मार्ग पावे, तिन साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बांछो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख का ही बिल लाइये, पूर्व लिखे कह लिखिया पाइये, रूप सुख प्रभु देव नहार, अवर त्याग तू तिसे चितार। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला का ही फिरे जान, कौन बसाई तीर संग, लपट रो रस लोभे पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पद चेती कर जाहे, जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ताजब मान लिहो मन भूल, राम नाम हृदय में तोल, लाद के संत संचाल, अवर त्याग किया जंजाल, तन तन कह सब कोए, मुख उजल हर दर गै सोए। एहो वापार विरला वापार है, नानक ता कह सद बलिहार है, चरण साध के तोय तोय पियो, वर प्रसाद को अपना जियो। साध की धूर करो इसनान, साध उपर जाइए कुरबान, साध सेवा वडभागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है, अंगनिक बिगंते साधु राख, हर गुण गाय अमृत रचा, क्या उठ गई संत दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया।
मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवता दार, सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाए, सब के जिसका उकरण है जोग, जिस बिंदु सर हुआ न हो, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब त्योच निर्मली करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवैर प्रचीत, भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जाके हृदय को हुई, सच करनी सुस्ता की रहत, सच हृदय सत मुकैत, साची दृ सचायाकार, सच वर्त सचा पासार, पार रंजिन सच कर जाता, नानक सोजन सच सुमाता, सुलोक रूप न रेख न रंग के चित्रे गुण ते प्रभिन्न, तिसै बुझाए नानका जिसो वै सो प्रसन्न अष्टपदी, अविनाशी ब्रह्मन मैं राख, मानु की तू प्री त्याग, तिस्ते पर नाही किच कोई, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद, सा तेरे की चरणी पाऊ, नानक कै मन हो नाउ, मन सब पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरण भरण जाकर नेत्र पूर, तिसका मंत्र न जाने होर, अनंत रूप मंगल सजा कै, सर्व तू सुनिए करता कै, राज मैं राजयुग मैं जोगी, तब मैं तुभि सर्विस मैं भोगी, त्याय त्याय भगत सुख पाया, नानक तिस पुर का किनंत न पाया, जाकी लीला की मित नाही, सगल देव हारे बगाहे, पिता के जन्म के जाने पूर, सगल प्रभु अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जिन दास नाम त्या वह से, त्यो गुण में जाको परमाई, जन्म रह फिरिया वह जाय, ऊंच नीतिस के स्थान, जैसा जना वह तैसा नानक जान, ना ना रूप ना ना जाके रंग, ना ना पी करे रंग, ना ना बिद किन्नु विस्तार, प्रभ अविनाशी अहंकार, नाना चलत करे खिनमाए, पूरे हो पूर्ण सब टाए, नाना बित कर बनत बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे कंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगला आकार, नाम के तारी पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जा का सत स्थान, पुरुष सत केवल प्रदान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरुष सम माहि समानी, सत कर्म जा की रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए जिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदायी, विश्वास सत नान गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कर दय प्रवेश, सत निर्द बुद्धिया जी को नाम जपता की गत हो, आप सत किया सब सत, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिरसो करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते कि मित न जाने किया, नानक जो इस भाव है सो वरतिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्मा, जिन बुझिया तसाया स्वाद, प्रभ कह रंग राजन रहे, गुर कह वचन पदार्थ रहे, हो जाते दुख कटनहार, जा कह संग तरह संसार, जन का सेवक सोविड भागी, जन कह संग एक लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, श्लोका सच युगा सच है पे सच, नानक होसी पे सच अष्टपदी, चरण सत सत पर संहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पिकनहार, नाम सत सत्यावनहार, आप सत सत सबतारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत सुनता, बुजनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, कर्ण करावन तिन मूल पछानिया, जाके हृदय विश्वास पर भी आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, भय ते निरभउ होए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माहि समाना, बस माहिले बस गडाई, ताको भिन्न न कहना जाई, बुझ है बुझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जान है संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग, सेवको प्रपालन हारा,
ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੁਮਾਰੈ। ਆਪਣੇ ਜਨਕਾ ਪਰਦਾ ਟਾਕੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉਚੇ ਉੱਚੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਖੈ, ਭਸਮ ਕਰ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ, ਜਿਸਕਾ ਸਾਸਨ ਕਢ ਤਾਪ, ਤਾਕੋ ਰੱਖ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਪਾ, ਤਿਸਕੇ ਕਰਤ ਫਿਰਤੇ ਜਾਤ, ਮਾਰਨ ਰਾਖੈ ਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ, ਕਾਇ ਸੋਚ ਕਰੈ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅਲਕ ਵਿਡਾਣੀ। ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਥਨ ਤ੍ਰਪੀਐ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਚਵਰ ਨਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਤਾ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਰਾਜੋ ਜੰਤਰ ਬਿਤਾਨੀ, ਮੰਤਨ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਮਾਨੀ, ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਹਿ ਸੁਤ ਕਾਮ, ਬੋਲੋ ਜਾ ਜੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਿੰਨੀ ਦਾਤ, ਕਰੈ ਭਗਤਾ ਤੁਮ ਕਹਿ ਚਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵੋ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੂ, ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕ ਨ ਜਾਣੂ, ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਹਜੂਰੇ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟਲੇ, ਹੇ ਮਨ ਤਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹੇ, ਜਿਨ ਜਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਦਰ ਸਪਾ ਮਿਟਾਵੈ, ਔਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਆਵਣ ਜਾਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਸਲੋਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸਤਪਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਲਤ ਪਲ ਸੁਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ, ਆਪਸ ਕਹੋ ਕਰ ਕਛ ਨ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿਆਵੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸਾਬ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ, ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਕ ਵਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ, ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਅਠ ਪੈਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮੈ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕੈ ਆਪਣੇ ਕਛ ਪਰਮ, ਸਹਿਬ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਬਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਚਰਨਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭੇਟ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰ ਗੈ ਗਵੇ, ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਦਮ ਪਤਿਆਨੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰਖਿਉ ਜਾਕਾ ਮੰਤਰ, ਅਮਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਸਲੇ ਮਿਲਾਏ, ਜੇ ਪਾਏ ਕੁਸਤ ਅਨੇਕ, ਸਤਿਪੁਰ ਪੂਰਨ ਭਵੇ, ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਨੀ, ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਗਿਣੈ ਨਾ ਪਾਈ, ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਹਿ, ਸਤਿਬਰਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਣੇ, ਇਹ ਹਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੂਏ, ਇਸ ਪੁਰਖਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸਚਿਵ ਦੇ ਸੇਵਕੋ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ ਹਰ ਹਰੇਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਪਰਮੋ ਦੁਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੀ, ਤਪਤ ਮਾਇ ਠਾਠ ਵਰਤਾਈ, ਅਣਦ ਪੈ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ੇ, ਭਉ ਚੁੱਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸਕਾ ਸਾਥਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜਪਨਾ ਮਰਾਰੀ, ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਸ਼ਰਵਨ, ਨਿਰਗੁਣਾਪ ਸਰਗੁਣ ਪਿਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ,
अपने चरित प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु चा नाही कोई सर्व निरंतर इको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साधक संग रच रचनाय अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन दिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करहु विचार एक सिमर नाम आधार और उपास समीत विसारु चरण कमल हृदय में उतारू करण कारण सो प्रभु सुमरत दृढ़ कर गहो नाम हरवत तन संचोहु भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा को मन भाए सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख नित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनिक पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवकत लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दर गय परवान मन प्रभु तो हर कहनाए दा दिस्ता वता बैठाए ताको विघ्न लागे कोई जा कर दे वसे हर सोए कल ताती ठांडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाऊ पौ बिन सह पूर्ण हुए आस भगत पाया तुम प्रगास तित कर जाए वसैब नासी कौ नान काटी जम पासी तत् विचार कह जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवा गवन मिटै प्रभु सेवा त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक उपावना छूटन हारी सिमृत शास्त्र वेद विचारी हर की भक्त करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल स्थिर तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटाम्बर बनता इनते कहो तुम कवन सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस्वस्ती रथ सुवारी झूठा टम झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे न बेगाना ना बिसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बडू बेस्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहि जन्म जन्म के किल बिक जाए आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पू सत हर को नाओ सह सुभाए नानु गुण गाओ गुण गाओ तेरी उत्तर समैलो बिन सुजाए हो मैं बित फैलो होए चिंद बसै सुख नाल सास गुरा सर नाम संभाल छाड़ स्यान सगली मना सासंग पावे सच तना हर पूंजी सच करो बिहार यहाँ सुखदर गय जयकार सर्व निरंतर एक को देख गौ नानक जाके मस्तक लेख एक को जप एक को साला एक सिमर एक को मन आहे एक के गुण गाओ नंत मंतन जाप एक भगवंत को एक एक हर आप पूर्ण हो रहे प्रव्यापन विसार एक दीप एक रात प्राचित गए मंतन अंतर एक प्रव्रता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभिंती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाच प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मिर श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो साथ साथ प्रभ तुम्हें ते आओ चरण कमल शिव लागे प्रीत भगत करूं प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट मां सुख होए हर पावे बिरला कोए जिन चाके से जिन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगासन दिन लिवलाग बटभागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जिनको जन को प्रभ होए उदयाल शिव किनु सदा निहाल बंधन काट मुख जन भया जन मरण दुख भ्रम गया छपुनी श्रद्धा सब पूरी रव रया सत्संग हजूरी इसका साथिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जगन मै रखै गुर प्रसाद को बिरला लाख है
ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੀ ਬਿਖਤੀ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤੇ ਹੈ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਹੇ ਕਾਮ ਵਾਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਭਗਤ ਪਾਇ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਤਨਾਮ ਬੂਢ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਚਾਉ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਹੀ ਸੁਆਉ ਨਿਤ ਰੂਪੇ ਦਰਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਬਿਕਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਗੀ ਵਸ ਦੀਜੈ ਕਰਮਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭਕ ਸੰਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਚਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਦਿ ਗੁਰ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਏ ਪਨੀਤ ਭਗਤ ਪਾਇ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਰਬੈ ਕੁੰਡ ਮੁਕਤ ਮੁਖ ਪਾਏ ਨਿਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਭਲੀ ਸੁਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੁ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਕਾਰੁ ਕਛ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤਾ ਪਾਪੁਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਣ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਤਾ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿ ਸੰਕਮਾਤ ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਵਰਣ ਚਿੰਨ ਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰਕ ਸੋ ਕਹੁ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਜਬ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਮ ਵੋ ਕਾ ਕਿਸੋਤ ਪਰਮ ਆਪਣ ਕੇਲਾ ਗੁਰ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨ ਦੂਜਾ ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਤਾ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕੋ ਗਨੀ ਜਬ ਇਕਹਿ ਰਕਮ ਅਪਾਰੁ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰ ਕਹੁ ਕੌਣ ਉਤਾਰੁ ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ ਜਬ ਆਪੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋ ਧਰੈ ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਾਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ਆਪਣ ਚਲ ਤਾਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਰਕਮ ਅਪਾਰ ਅਵਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਉ ਕਹਾ ਬਿਨਾ ਸੁਨ ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ ਜਬ ਅਭਿਗਤ ਗੁਚ ਪ੍ਰਵੇਕਾ ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਚ ਪੁੱਛਤ ਲੇਖਾ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਗੋਚਰ ਗਾਦੇ ਤਬ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪੀ ਚਰ ਜਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਰੂਪ ਆਪੀ ਉਪਰ ਜਾ ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ ਤਹਿ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਤੋਤਾ ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ ਤੈ ਕੌਣ ਕੁਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੈ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਗੋਕੀਸ਼ ਜੈ ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਜੋ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਤੈ ਕਿਸੈ ਭੂ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨਿਆਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸਮਾਰ ਜਪ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਣਾਈ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ਜੈ ਸਰਵ ਕਲਾ ਆਪੈ ਪਰਵੀਨ ਤੈ ਬੇਦ ਕਤੇ ਕਾ ਕੁਚੀਨ ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਉਰਧਾਰੈ ਤੂੰ ਸਗਨ ਸਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੈ ਆਪਣ ਉਚ ਆਪਣ ਆਪ ਨੀਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਏ ਚੇਰਾ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮਨ ਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਨੋ ਆਪ ਜੇ ਅਚਲ ਅਛੇਦ ਭੇਤ ਸਮਾਇਆ ਉਹਾਂ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੈ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੈ ਕੈ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤਾ ਤੈ ਕੌਣ ਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ਹੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਤਿਆਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਹਾਰਾ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਉੱਚਤੇ ਉੱਚਾ ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੈ ਪਹੁੰਚਾ ਜੈ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪ੍ਰਪੰਚਕਾਰ ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੋ ਵਿਸਤਾਰ ਆਪ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਵੰਚਾਵਤ ਹਾਲ ਜਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਹੋਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ ਸੁਖ ਦੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਆਪਣ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤੂੰ ਨਾਨਕੇ ਕਹਿ ਜੈ ਅਭਿਗਤ ਭਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਪਾ ਕਾਪੇ ਧਨੀ ਉਨਕੀ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਬਨੀ ਆਪਹਿ ਕੌਤ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਚੋਜ
ਹੱਪ ਹੈ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਯੋਗ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪ ਨਾ ਲਾਵੈ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੀਰਤਿ ਲਾਵੈ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਥਾਹ ਗੰਤੇ ਅਤੁਲੈ,

सह दृष्टानुष्टपदी। आप कथय अब सुन निहार, अपहि का विस्तार, जत भावै तं सृष्ट उपाय। अपने भाणे लै समाय, तुम ते बिन नहीं किच होए, अपन सू सब जगत भरोए। जाको प्रभु जी आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत् कविता, नानक सगल सृष्ट का जीता। जी जंत्र सबता कै हाथ, दीन दयाल नाथ को नाथ, जिस राखै तिस कोई न मारै, सो मुआ जिस मनु बिसारै, तिस तजबर कहाँ को जाए, सब शरीर निरंजन राय। जी की जुगत जा कै सब हाथ, अंतर बाहर जानू साथ, गुण निदान बेअंत पार, नानक दास दा बलिहार। पूरन पूरहे दयालु, सब ऊपर होवत कृपालु, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो ब्याप। प्रतपाल्या जीवन बहुपात, जो जो रचियो सुति सहत्यात, जिस भावे तिसलय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मनंत्र विश्वास कर मान्या, करन हार नानक जानिया। जन लागा हर एक कह नाई, तिसकी आस न बिरती जाए, सेव कव सेवा बन आई, पंगूज परम पद पाई, स्ते ऊपर नहीं विचार, जाते मन बसिया निरंकार। बंधन तोर भय निर्वैरन, दिन पूजै गुर के पैरे, लोक सुखी पर लोक सुहेले, नानक हर प्रव्या तह मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो परमानंद, राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उधार, अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का है सुहाओ। हाथ पैर प्रपे को नेरा, मिटै ज्ञान बिन सह अंधेरा, सुनो पदी सिर दै बसाओ, मन इच्छे नानक फल पावो। हालत पलत दोए लेहु सुआर, राम नाम अंतर उतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै ते साच प्रिखिया, मंत्र नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दर गहने बह के तुम्हारी, का टेकर को मन माए, नानक भौर न आवै जाए। तिस्ते दूर कहा को जाय, उपरै रखन हर त्याए, निरभउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै, जिस प्रभु राखै सुनाई दुख। नाम जपत मन हो सुख, चिंता जाय मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार। श्री उपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमर जाके दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हरूप। तान सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सुहोत निहार, ताकै निकट नावत काल, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक

स्वस्थ परी संत सांगु अंतर प्रभ डिठा नाम प्रभु का लागा मिठा सगल समग्री एक सकट माहे अनिक रंग नाना दृष्टाहे नौ निदमृत प्रभु का नाम नौ निदमृत प्रभु का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाद अनहत्यनाद कहन न जाई चल विस्माद तिन देखे सब दिखाए नानक तिजन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रह भगवंत तरण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बै संतर माहे चार कुंट दै दिशे समाहे तिस्ते भिन नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मैं दे शशियर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप डोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाई है गुनह।

संत जना का भीखण सब ब्रह्म, संत जना कह हृदय सब धर्म, संत जना सुने सुबचन, सर्व्यापी राम संग्रचन, जिन जाता तिस की ये रहत, सत वचन साधु सब कहत, जो जो ईसो सुख मान्य, करण करावन हार प्रभु जाने, अंतर वसी बार पियो, नानक दर्शन देख सब होई, आप सत किया सब सत, तिस प्रभु ते सगली उत्पत, तिस पावै ता करे विस्तार, तिस पावै ता एक अंकार, निकला लकी न जाय, जिस पावै तिसले मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आपा भरपूर, अंतर का जिसाप जनाए, नानक ते जनिया बुझाए, सर्वभूता वरतारा, सर्व नैना पिकन हारा, सगल समग्री जाका तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी किन्नी माया, सब कह मादलिप तो रहे, जो कुछ कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवै आज्ञा जाए, नानक जा पावै ताले सुमाइष्टे होए सुनाई, बुरा उरे कहो हो कि न कछ करा, आप ला कर तू तत निकी, आपे जाने अपने जी की, आप साथ धारी सब साच, उत पुत अपन संग्राज, ताकि गत मित कही न जाए, तू सरोए तन सो जी पाए, जिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक यो जान, जो जाने ते श्रद्धा सुख होए, आप मिलाए ले प्रभु सोए, ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुख जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जने आया, जिस प्रसाद सब जग तराया, जन आवन का सो आओ, जन कै संग चिता वै नाओ, आप मुक्त मुक्त

पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरहु गोविंद मन यंत्र की उतरे चिंद आस अनित त्याग तरंग संत जिना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करहु सात संग अगन सागर तरहु हर तन के पर लेहु भंडार नानक गुरपूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पर परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुखभंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल रतन सुनत कमावत होत उदार आप करे लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महात कह माथे नानक उतरे तिन कह साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पय सबरेन अमृत नाम साध सुन लैन सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रतारी नानक निभी के हमारी प्रभ की उस्तद करो संत मीत सावधान का गरचीत सुखमनी सहज गोविंद गुनाम जिस मन बसै सुहूत निदा सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब त्यूज पाए स्थान पौर न होवे आवन जान हर तन काट चलै जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम कुशल सहज आना खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जो प्रभ ध्यान चार ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर्थ का पिता समदर शीख दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोय सब जुग मेहता की गत होय गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद वकानी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपरा सा समिटे संत कृपा ते जमते छुट्टे जाके मस्त कर्म प्रपाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुन लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत जन्म मरणता का दुख निवारै लभ दे तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहि सुमानी दुख रोग बिन से पै परमु साध नाम निर्मलता के कर्मु सब ते उच्चता की शोभा बनी नानके गुण नाम सुखमनी सब ते उच्चता की शोभा बनी नानके गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम वाहिगुरु जी।

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोच है सोच न हो वई जे सोची लख वार चुप है चुप न हो वई जे लाए रहा ले वतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होहे ता एक न चलै नाल किव सचियारा होइऐ किव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ताह मैं कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निसाण गावै को गुण वडियाइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगां जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार अख है मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मुहों के बोलन बोलियै जित सुन तरे प्यार

सुना है कुदरत भाव सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत दी जान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान अपमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत नु कादर

0: नगरी करम लंघाए पार। कोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत। लाटू मां दाणिया अनगाह पंखी पौंदियां लैना सा। सूए चढ़ पवाइए जंत नानक पौंदिया गणत ना अंत।
1: बंधन बंद पवाए सोए पै कृत नचे सब कोए। नच नच हसे चलने से रोए उड़ना जाए सजना होए। नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन मन पाओ पौड़ी ना उतर अलंकार गए।

लभ पाप दोय राजा महता कूड़ होवा सिकदार काम लेव सद पुछिए बह बह करे विचार अंधी रहियत ज्ञान भी हुणी पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे श्रृंगार

पांडु ही पांडु को जाए। पंडे बाज न कहे नानक पंडे बाय राय को सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाई है।

से रंग रोवे चुप पी कर जाए प्रभा नहीं किसे केरी भाज सचे लाए दरबार ऊपर खर्च मंगा

अमदियो जिस देख चरण अघन हरियो निस्बस रेख समान तिहान सुनाम सुने सुत पान डरियो पन दस सुस जगतर गुरु की पारस भेट।

समूह संगत जिन्ने माई भाई गुरु दरबार विच दूर दरेडे घरां विच गुरु के लंगरां विच कमारे सेवा सब माई भाई गुरु बख्शी होई गुरु फतेह नाल सांझ पाओ रसना पवित्र करो प्यार सहित आखो भाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह जी जुगो जुग अटल आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी छत्र छाया हेठ हजूरी अंदर गुरु सवारी साध संगत

अबिचल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप वसाया राम करते आप वसाया सर्व सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे गुण गावह पूर्ण परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सत गुर बलिहारी जिन एहो थान सुहाया घर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम अराध है कटिए जम की फांसी राम काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर नाम त्याए सगल समग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख माण है रलिया दुख दर्द भ्रम नासी शब्द सवारे सतगुर पूरै नानक सद बल जासी दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़ै सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिसती वड्डी वड्याई राम आद जुगाद भगतन का राखा सो प्रभ भया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला दह दिस पूर रहया जस स्वामी कीमत कहन न जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अबचल नीव रखाई ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत भव भंजन अनहद वाजे धुनिए राम अनहद चुनकारे तत बिचारे संत गोष्ट नित होवै हर नाम अराध है मैल सब कट है किलविक सगले खोवै तह जन्म न मरना आवण जाना बहुड़ न पाईऐ जुनिया नानक गुर पर समेसर पाया जिस प्रसाद इच पुनिए सूही महला पंजवां।

बिसर नाही एक खिनो, गुण गोपाल उच्चर रसना, सदा गाइय अन दिनो, जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तन अमृत पीजै, बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी, पेख दर्शन जीजै, राग सूही महल्ला पंजवा छंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हौं सम्मल थकी जी ओह कदे ना बोलै कौरा, कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान, औगण को ना चितारे, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले, घट घट वासी सर्व निवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास दा शरणागत, हरे अमृत सज्जन मेरा, हम बिस्म भई जी हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी हम चरण कमल पग छारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, किस जेवड़ अवर न कोई, आद अंत मद प्रभ रव्या, जल थल महियल सोई, चरण कमल जब सागर तरिया, भव जल उतरे पारा, नानक शरण पूरन परमेश्वर, तेरा अंत न पारा वारा, ओ निमख न छोटा जी हर प्रीतम प्राण अधारू, गुर सतगुर कहया जी साचा अगम बिचारू, मिल साधु दीना ता नाम लीना, जन्म मरण दुख नाठे, सहज सुख आनंद कनेरे, हौं मैं बिनठी गाठे,

आई हर प्रीतम मन है सुधारू मैं खोजित खोजित जी हर निचल सो कर पाया सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चितलाया प्रभ अवनासी हों तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया।

विसरै गुर शब्दी विचार मुंद सुहावी सोहनी जिस घर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कुटंब है मन मुख मुग्ध रत्ता हमे मेरा कर्म हुए किछ साथ न लिता शेर ऊपर जमकाल न सुजई दूजे पर मिता फिर वेला हथ न आवई

मन तन निर्मल अत सुहना, भेटिया कृष्ण मुरार। पाओ पाओ सब तिस दा, सो सच वरतै संसार। महल श्लोक महला पहला। वाहु खसम तू वाहु, जिन रच रचना हम किए। सागर लहर समुंद सर, वेल वर्ष वराहु। आप खड़ू वह आप कर, आपी न आपाहु। गुरमुख सेवा थाए पवै, उन मन तत कमाहु। मस्कत लहो मजूरिया, मंग मंग खसम दराहु। नानक पुर दर वे परवाह, तौ दर ऊणा नाहि। को सच्चा वे परवाहु। महला पहला।

जे बुढ़े थी ये मरण पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौप शरीर गुर सबदी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हिरदय रब रहया हर हीरा हीर जन्म मरण

संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सदगुर सिक्की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख बड़ पागी है सतगुर सिख का हलत पलत सवारे नानक सतगुर सिख को जिय नाल संवारे गुर के ग्रह

कार्य राज सेवा करत हो है नहकामी तिसको होत परा पत स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जीव का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एके आप नहीं कश परम सहस से आनप ले आना जाइए नानक ऐसा गुरबड़ भागी पाइए सफल दर्शन पे खट पुनीत पर सचरंगत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर बचन कर आगाने मन संतोखा तम पतियाने पूरा गुरख्यो जाका मंत्र अमृत दृश्य पे कह हुई सन गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जेबा एक उस्तत अनेक सतपुरक पूरन विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनिक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे सत बलहारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने ए हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमर सो होई उस

मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक परगा से नानक परमो दुख तैते ना से तपत माहे ठांड वरताई अनद पया दुख नाटे पाई जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूरण उपदेसे पौचुका निरपो होए बसे सगल ब्याद मन ते कह नसे जिसका साथिन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी तित पाई चुके परम गवन सुन नानक हर हर जस रमन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोहे अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत

एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंड उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनिक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निधान में हर नाम निदान जब नानक दर गए परवान मन पर बोध हर कहनाए दह दिस्तावत आ बैठाए ताको बिगन न लगे कोई जा कर दे बसे हर सोई कलता दी ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ बिन से पूरन होए आस भगत पाए या तम प्रगास तित कर जाए बसे अविनाशी।

अवसरण गुरुदेव और रतन जन्म का हुए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत सास्त वेद विचारे, हर की भगत का

नानक मांगे नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्टि महा सुख होई, हर रस पावे बिरला कोई, जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने, सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साथ के संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगासन दिन लिवलाग, बड़ पागी जप्या प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सदगुर ते निर्मल मत लई,

इसका साथ ही लिया मिलाई नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुर प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिकते काटे जन्म जन्म का टूटा गाढ़े गुरपुरे तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एह काम आम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरा नाम जपावो भगत पाए तर यह संसार बिन भक्ति तन हो सी चार।

वेग दृश होय मन बिगसे सात चरण तोय भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जपलाया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाय प्रभक्त संत दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरुष कारण करता भगत जना के प्राण आधार जो जो जब पैसो हो पुनीत भगत पाए लावे मन ही हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोक पाए एक निमक हर के गुण गाय अनक राज भोग पढ़े आई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत पलि सुकन्नी शोभा तनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत।

तमोको किसे व्यापत, जब अपन आप पार ब्रह्म, तमो कहाँ किस होवत परम, आपन केल आवर्ती जा, नानक करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत को किसको गनी, जब एक हर अगम अपार, तब नरक सुरुख को कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब सिर सकत कहो कि ठाए, जब आपे आप अपनी जोत धरे, तब कवन निडर कवन कत डरे, आपन चल ताप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुखापनासन, तय जन्म मरण को कहाँ विनाशन, जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपन आप यज रजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा, जय निर्मल पुरख प्रभ पत होता, तय बिन मैल कहो क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण, ते कौन को मान कौन अभमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, ते चल चिद्र लगत को की, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, ते किसे भूख कवन तृप्तावे, करन करावन करने हार, नानक करते का नहीं सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे परवीन, तबेद कतेब को तहबेद कतेब कहाँ कोचीन, जब अपन आप उड़ता रहे, तो सगन अब सगन कहाँ बिचारे, जय आपन ऊंचापन आप नेरा, ते कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्मार, नानक अपनी गत जानो आप, जय चल छेद अभेद समाया, उहाँ किसे बेआपत माया, आपस को आपे आदेश, तय गुण का नाही परवेश, जय एक एक, एक भगवंता, तय

क्या जब अवगत भगत है आप जय पसरे पासार संत प्रताप धूपा काया पैतनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौत करे अनद चोज आपे रस भोग निर्जोग जिस पावे तिस आपन नाम लावे।

दूजा कह दिष्टा और अष्टपदी आप कते आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जा तिस पावै ता शिष्ट उपाय अपने पाने लय समाय तुम ते पिन नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ ज्यो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल शिष्ट का जीता जी जन सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनु बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुणिधान बेअंत पार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर हो वत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे बे आप प्रतपाल जी अनबो पार जो जो रजो सत सहत याद जिस पावे तिस लय मिलाए।

लब देखा करो उधार, अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का एह सुहाओ। आठ पहर प्रपे खोनेरा, मिटिया ज्ञान बिन से अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मन निच्छे नानक फल पावो। अलग पलग दे लियो सवार, राम नाम अंतर उतार, पूरे गुर की पूरी दीख्या, जिस मन बसते साज परीख्या। मन तन नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पो जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निब्बे खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बोहर न आवे जाए, तिससे दूर कहाँ को जाए, उबरे राखन हार त्याय। निर्भो जपे सगल पो मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे, जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानकता के कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन प्रेखत उद्र श्रेष्ठ, चन कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हरूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रदान, जिस मन बसे सो होत निहाल, ताके निकट न आवत काल। अमर पये अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगा। अष्टपदी संत संत अंदर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागम मीठा, सगल समग्री कसकट माहे, अनेक रंग नाना दिष्टाय। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समात अनहत तैनात, कह न जाय चर विस्मात। तिन देख्या जिस आप दिखाए, नानक तिस जन आप सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत, तरण माहे आकाश प्यार, सर्व लोग पूरन प्रतपाल। बंतन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसंतर माही, चार कुंट तै दिसे समाये, तिससे भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, सस्य सूर ने खतर मैं एक, वाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले, सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइये गुणे अमोल, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे हो स्वामी ओत पोत, गुरु प्रसाद परम का नास, नानक तिन में एह विसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने सुब बचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन, जिन जाता तिसकी एह रह, सत बचन साधु सब कह, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस पावे ता।

तिस पावै ता एकंकार अनिकला लखी न जाए जिस पावै तिस लय मिलाए कवन निकट कम कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वभूत आप वरतारा सर्व नैन आप एक कन्हारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब के मद लिप्त तो रहे जो किश कहना सु आपे कहे आज्ञा वह आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इससे हो सुना ही बुरा और कहूँ कि न कुछ करा आप पला कर दूत अतनी की आपे जाने अपने जी की आप साच तहारी सब साच ओत होत आपन संगराज ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक एव जान जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त सिद्ध भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब

सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिन आसनित त्या गोतरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सात संग गन सागर तरो हर तन के पर ले पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सात संग पज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित्वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक साध के वचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत हो तुधार आप करे लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत वाजय सुन सुन अनंत करे प्रभगा जय प्रकट गोपाल महान के माथे नानक कुदरे तिन के साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैद पहे सबरेन अमृत नाम साथ संगलैन सुपर सन पहे गुरुदेव पूरन होई सेवक के सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रस न कहते कर प्रसाद दिया प्रभ धारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ की उसत करो संत मीत सावधान एकाग्र चित सुख मन सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूरन होए प्रदान पुरख प्रगट सब लोए सबते ऊंच पाए स्थान बोर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे परापत होए खेम शांत रिद नवनित बुद्ध ज्ञान सर्व तसिद विद्या तप जोग प्रत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल परगा सब के मद सगल देवदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन

महाराज ने कृपा कीती है, दोवें परिवारां नूं खुशियां बख्शिश कीतियां ने। बच्ची बच्चे दी मंगनी रोका है, आओ शुक्र विच आपां सारे जुड़ जाइए। गुरसिख दा कोई भी कारज होवे, सब तो पहला ओ मालक दे नाम दा, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा आसरा लैके फिर सारे कारज दी खुशी मनांदा।

सतगुरु के चरण तोहे तोहे पीवा, गुरु नानक जप जप सत जीवा, आओ सत संतोख कर पाओ, कुड़म कुड़माई आया बलराम जी। पावन शब्द गा के उस तो उपरंत साडे बड़े प्यार वाले बीबी चंचल दीप कौर इसे स्थान दे ढाडी कीर्तनीए वो आप जी के सन्मुख होणगे जी। बड़े प्यार नाल गुरु जी का शुकराना करिए।

विनती है कि दो पंक्तियां बधाइयां दी दसरे गाउणगे। सच्चे पातशाह जी ने तरस किया है जिन्हां चिर ढाडी सिंह तैयार होणगे उन्हां दा साउंड लग जाए दो मिनट लई। दादा जी सरदार बलवीर सिंह गिल शेर गिल और दादी जी स्वर्गवासी रजीत कौर उर्फ छिंदो, पिता जी बहादुर सिंह शेर गिल और माता जी रणजीत कौर और बच्ची मनप्रीत कौर शेर गिल, इसी तरह दादा जी स्वर्गवासी आत्मा सिंह तूर, दादी जी कुलवंत कौर, पिता जी हरिंदरजीत सिंह तूर और माता जी मनजीत कौर, बेटा हरजोत सिंह नू तूर अज महाराज के चरणों में मंगनी बड़े प्यार नाल इस सारा ही परिवार हाजरियां भर रहा है। आओ दो मिनट लई बिना रिदम तो समाप्ति है। एक बारी सारे कह दईए जी।

को ओंकार सतगुरु प्रसाद तन सरंदा सचा पातशाह जिन जगत लाया मोहलत पुन्नी पाई परी जानी अड़ा कत चलाया। तन सरंदा सचा पातशाह जिन जगत लाया मोहलत पुन्नी पाई परी जानी अड़ा कत चलाया। जानी कद चलाया लिखिया आया रुने वीर सुबाए काया हंस थिया वे छोड़ा जा दिन पुने मेरी माए। जिहा लिखिया तिहा पाया जिहा पुरब कमाया धन सरंदा सचा पातशाह जिन जगत अंदर लाया। साहिब सिमरो मेरे भाई हो सबना हो पयाना इथे धंधा कूड़ा चर देहा आगै सर पर जाना। आगै सर पर जाना ज्यो मेहमाना काहे गर्व की जय जेत सेवे दर्ग है सुख पाये नाम तिसे गाली जय। आगै हुक्म न चलै मुले सिर सिर क्या वेहाना साहिब सिमरो मेरे भाई हो सबना हो पयाना जो तिस भावै।

ज्ञानी मुकद जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब परहात, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी स्वरूप, उर्धार है जो अंतरनाम, शर्म में पिक है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक अपर्स सकल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाई रसना पर्स, मन में प्रीत निरंजन दर्श, प्रतिय रूप ने पिक है नेत्र साध की टैल संत संघेत, करण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री पांच दोख ते रहत, नानक कोट में देखो ऐसा अपारस, बै सुनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए पिन, करम कर धोए ने करम, तिस बैसनो का निर्मल धर्म, कौ फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राच है, मंथन अंतर सिमर गोपाल, सब उवर होत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानको वैष्णो प्रमगत पावे, भगवती भगवंत भगत कारण, सकल त्याग है दुष्ट का संग, मंते विंस है सकला परम, कर पूजय सकल पार ब्रह्म, साध संग पापा मन खोवे, तिस भगवती कीमत उत्तम होवे, भगवंत की टहर करे नित नीत, मंत्र अर्पय विषण प्रीत, हर के चरण हृदय वसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म में शोध है।

0: सरियो आप होय अने तरंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत देता सा प्रकाश पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल सरो उस तत् कर है अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रवरची बहुविध अनेक प्रकार अश्वदी कहीं कोट होए पुजारी कहीं कोट आचार व्यवहारी कहीं कोट भय तीर्थवासी कहीं कोट वन प्रमय उदासी कहीं कोट वेद के स्रोते कहीं कोट तपी सर होते कहीं कोट आत्म ध्यान धार है कहीं कोट कब का विचार है कहीं कोट नौतम नाम से आवै नानक ते का अंत न पावै कहीं कोट भय अभिमानी कहीं कोट अंध ज्ञानी कहीं कोट कृपण कठोर कहीं कोट भगात्म निकोर कहीं कोट पर तप कोई राय कहीं कोट पर दुख ना करै कहीं कोट माया तन माही कहीं कोट पर देश मन बाही जित जित लाभ हो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कहीं कोट सिद्ध जति जोगी कहीं कोट राजी रच भोगी कहीं कोट पंखी सरपू पाई कहीं कोट पाथर ब्रिक निबजाई कहीं कोट पौंड पानी बैठ संतर कहीं कोट देश भूमंडल कहीं कोट सतीयर तुर नक्षत्र कहीं कोट देवदानो इंद्र तिर छत्र सागल सामग्री अपने सुत तार है नान जिस चीज भाव है तिस तिस निस्तार है कहीं कोट राजस्थान सुचातक कहीं कोट वेद पुराण स्मृत सारतु कहीं कोट किए रत्न संबंध कहीं कोट नाना प्रकार जंत कहीं कोट किए चिरजीवे कहीं कोट ग्रीमेर सो भ्रंति वे कहीं कोट जक्का किन्नर पिसाच कहीं कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच सब ते नेरा सबू ते दूर नारका अपनी त्रिहा भरपूर कहीं कोट पाताल के वासी कहीं कोट नरक स्वर्ग निवासी कहीं कोट जन्मा जीव मर कहीं कोट बो जो नी पिरा कहीं कोट बैठ थी खाए कहीं कोट खा लै तक पाहे कहीं कोट किए तनवंत कहीं कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा ते तेरा खे नान सब किस प्रभ के हाथे कहीं कोट भय बैरागी राम नाम संग तिली लागी कहीं कोट प्रभ को खोजंती आत्म मैं पार बुमला हंती कहीं कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभ अवनाश कहीं कोट मांगे सतसंग पार बुम तिन लागा रंग जिनको हो आप तो प्रथम नानक से जन सनातन तन कहीं कोट खानी अरखंड कहीं कोट काच ब्रह्मंड कहीं कोट हुए अवतार कहीं जुगत के नो विस्तार कई बार पत्रियों पाचार सदा सदा एक एक इंकार कहीं कोट किने भूपात प्रभते हुए ब्रह्मा समात ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ तोई कहीं कोट पर ब्रह्म के दास तिन हो बता तुम प्रकाश कहीं कोट सतके बीते सदा निहार एक निद्रे कहीं कोट नाम रज पीवै अमर भय सत सद ही जीवै कहीं कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख साज समावै अपने जन को साथ साथ तुम्हारे नान कोई परमेश्वर की प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाई कोये नानक तुझ बलहार न जल थल मैयर छोई अश्वरी करण करावन करण है जोग जो तुझ भावे सोई होग किन मैं थाप था पनहारम तनाही किस पार आवारम हुक्मे तार अदर रहा वह हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच गुहार हुक्मे अनिक्रम प्रकार कर कर देख अपने बढ़ियाई नान सब में रहा समाई प्रभु भावे मान कुगत पावे प्रभावे ता पात्र त्रावे प्रभु भावे बिन सार सी राख प्रभावे ता हर गुण पाख प्रभावे ता पत दुतारे आप करे आपन विचार दोहां श्री आकाश स्वामी खेला विषय अंतर जामी त्यो भावे सोकार करावे नान दृष्टि अमरण आवे कहो मानुक ते क्या हुई आवे जो तुझ भावे सोई करावे इसके हाथ होय ता सब की जले जो तुझ भावे सोई करे अनजानत भिख्या में रचै जे जानत अपनी आप आप बचै पर मैं भूला दे चितावे नमक माहि चार गुण पिरावे कर कृपा जिस अपने भगत दे नान ते जन्ना मिले खिन मैं नीच कीट गुराज पार गुण गरीब निवाज
1: जाका दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल तैं तुज प्रगटावे जा को अपनी करै बख्शीस ता काले खारा करै जगदीश जियो पिंड सब चिसकी राज घट घट पूर्ण परम प्रकाश अपने बणत आप बनाई नारकी वै देख बड़ाई इसका बल नाई इस हाथ करण करा मंत्र को नाथ आज्ञाकारी बपराजी हो जो त्रिभावे सोई पंथी हो कब हूँ ऊंच नीच मैं बसा कब हूँ सोग हरक रंग हसा कब हूँ निंद चिंद प्योहार कब हूँ उपकाश प्यार कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कब हूँ नृत्य करै भू बात कब हूँ सोए रह चंद्रात कब हूँ महाक्रोध विकराल कब हूँ तरफ की हो त्रवार कब हूँ होए बह बड़ राजा कबू बेकारी नीच का साजा कबू आप कीर्त में आवे कबू भला भला कहावे जो प्रभु राखा तिमी रह गुरु प्रसाद नानक सच कह कबू होय पंडित करे बख्यान कबू मोंदारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हर्त पतंग होय जिया अनिक जोन परमै परमिया नाना रूप जो सुहागी दिखावे जो प्रभावे तिवै निजावे जो तिरभावे सोई होए नानक दूजा वरना कोए कबू साथ समित पावे उस स्थान ते बोल न आवे अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मंथन नाम रचे एक रंग सदा बस है पार प्रकाश रंग ज्यो जल मै जल आय खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ का सद गुरु बान सलोक सुखी बसै मन सकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अंकारिया नानक गर्भ कलिया परी जिसका अंतर राज अपमान सोधन पाति हो समान जो जाना मैं जो बनवंत सो हो विष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहा वै जन्म मरा भोजन परमावै तन भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कृपा जिसका हृदय करीबी बसावे नानकिया मुक्ता गे सुख पावे धनवंता हुई कर गर्भावे तन समान कर सिंह ना जावे बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस पल भीतरता का होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत हिरमा हो जा बसवंत किस ना बदय अपंकारी धर्मराज चिचकरी कुवारी गुरु प्रता जा काम के अपमान सोज नानक त्रगे प्रवान कोट करम करह हो दारे धर्म पावे चकली पिथारे आनिक तपस्या करी अंकार नरक स्वर्ग तिर तिर अवतार अनिक जतन कर आत्मने दरवै हर दुर्गा को कैसे गवै आप को जो भला कहावे तुझे भलाई निकट न आवे सर्व की रेम जा का मन होए को नानका के निर्मल सोए जब लग जाना मुझे गत होए तब इसको चुकना ही कोए जब ये जाना मैं किस करता तब लग ग्रब जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नीचल नाई चीत जब लग मोह मगन संग भाय तब लग धर्म राय दिस जाई परम कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हूँ छूटे साहस कटे लक को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनिक भोग दिख्या के करे न तृप्तावे कब न मरे बिना संतोख नहीं को राज सुपन मनोरथ मृत्य सब काज नाम रंग सर्व सुख होई बड़ भागी किसे प्राप्त होई करण करावन आपे आप सदा सदा नान हर जाप करण करावन करण हाल इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्टि करी तैसा हुई आपे आप प्रप्त हुई जो किचकिन और सोपना रंग सब ते दूर सबु कह संग पूजा देखे कर विवेक आपही का पैनिक प्रणा बिनसे आपने जाए नार सदिरिया समाय आप उपदेश है समझे आप रतिया सबके साथ आप कीनो आपन विस्तार सबके तुझका उतरण है हाल उसते बिन कहो कित होई थान तरन करे कर रोई अपने चलिता करण है हार कौतक कर रंग व्यापार मन में आप मन अपने माह नान कीमत कह न जाय सत सत सत प्रस्वामी गुर प्रसाद किने बकियानी सत सत सत सत जीना कोट मदे किने दिल है जीना भला बला बला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी त्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत चरण जो जन प्रै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बाहर बहुर अवतार परी संत कै दुख नार जागट है संत कै दुखन जब ते नहीं छुट्टा है संत कै दुखन सुख जब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सो बाते हीन संत के हते कुर कै ना कोई संत कै दुखन थान पर टोई संत कृपाल कृपा जे करै नान संत संग निंदक भी सराय संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जो लवै संतन कै दुखन तरप जून पाए संत कै दुखन त्रिगल जो किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब कु चलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच नीचाए संत दुखी का ताव को नाहे नान संत पावे ता ओ विगत पाहे संत का निंदक महत ताई संत का निंदक हिंटकन ना पाई संत का निंदक महतियारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजे हीन संत का निंदक दुखिया अर्जीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत के निंदा दोख में दोख नान संत पावे ता उसका भी हो ही मोख संत का दोखी सदा पीवित संत का दोखी कृदय कारय मित संत के दोखी को डान लागे संत के दोखी को सुप्ति आगे संत का दोखी महंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्म मरे संत के दुख ना सुप्ति डराय संत के दोखी को ना ही ठाऊ नान संत पावे ताले मिलाए संत का दोखी अनबीते टूटे संत का दोखी कृदय काज ना पहुंचे संत के दोखी को ज्ञान परमाई है संत का दोखी उजड़ पाई है संत का दोखी अंतर के तोता जो साथ बिना मृतक की लोथा संत के दोखी की जड़ की तरह है आपन बीजा पे ही खाए संत के दोखी को अवर न राखन हार नान संत पावे ताले उबार संत का दोखी उबड़ लाई जो जल बिहुन मतली तड़पड़ाई संत का दोखी भूखा नहीं राजे जो पाव कीट निद्रा पै संत का दोखी छुटे गे लाल जो बुआर तिलखित माहे डुबे लाल संत का दोखी तन तेरा तो संत का दोखी सदमित मिथ्या कैत कीर्त निंद का दुखी प्यार नान ज्योत जबावे सोई थियाल संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दोखी को दुर्गा मिले सजाए संत का दोखी सदा से काइये संत का दोखी नाम रह न जुआई है संत के दोखी की पूजे न आसाल संत का दोखी उठ चले निराशाल संत कह दुख न तिष्ठ कोई जैसा भाव है तैसा कोई होई भया कृत न मिट कोई नानक जान सच्चा सोई सब कर चुके उकरण हार सदा सदा तुझको नमस्कार प्रभ के उत्त करो दिन रात तिसे त्याहू सात ग्रास सब कुछ उड़ते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेलिया करने हार दूसर कौन कहे विचार जिस तरह कृपा करे तिसे अपने नाम दे बड़ बाकी नानक जन से सलोक तजो सियान पुत्र जनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रख

साधु संग सब संग चारण चलो मार गोविंद मिटे पाप तिपे हर बिंद कार हर कारम सर्वन हर कथा हर तरके नान पूजन मथा पर भागी ते जिंदग माय सदा सदा हर के गुण गाय राम नाम जो करे विचार से तन मंत्र करि संसार मन तन मुख बोला हर मुखी सदा सदा जारो ते सुखी एको एक एक वचन इत उत कियो तो जी जान नाम संग जिसका मन मानिया नान इतने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपने आप सूझे जिसके जानो कृष्णा पूजे साध संग हर हर जिसका सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अंधन कीर्तन केवल ज्ञान गिर समय सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा जिसकी कटिया जम की फांसा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक से न लागे दुख जिसको हर प्रमन चितावे सो संत सुवेला नहीं दुलावे जिस पर अपना कृपा करे सो सेवको की ते डराए जैसा सात ऐसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोद सोद सिज्या गुरु प्रसाद तस पूजिया जब देखो तब सब किज मूल नान सो सुखम सो यस्थूल न किच जन मैं न किच मर आप चलिता पी कर आवन जावन दृष्ट अमृत यागा कार्य धारी सब चिट आपे आप सकल में आप अनक जुगत रच ताप ताप अब नासी नाही कित खंड थारन थार रहो ब्रह्मंड अलका पेव पुर प्रताप आप जपाता नान जाप जिन प्रभु जाता सो सो भावंतु सकल संसार दुरे तिन मंतु प्रभु के सेवक सकल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुरु का सब जप भय निहाल उनकी सेवा तो ही लाग जिसनों कृपा करे बड़ भाग नाम जप दुपावे बिसराव नान तिन पुरख को उत्तम करमान जो किच करे सो प्रभ का रंग सदा सदा बस हर संग सहज स्वभाव हुआ सो होय करने हार पछाण सोई प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सात सादाना जिसते उपजे थे समाय समाय सुख निदान उन्होंने आई आपको आप दीनो मान नान प्रभजन एक हो जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभु वृथा जन हार जा का सिमरन उतरी है नान तिथ बुलहार करी टूटी का नार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल के चिंता जिस मन माहे तिथे वृथा को ही नाहे प्रेम मेरे सदा हर जाप अब नासी प्रभु आपे आप किया कछु न होई जेसो प्राणी दो चे कोई जिस बिन ना ही तरह किस काम गत नानक जापे कर नाम रूप वंत हो ना ही बोवे प्रभ की जोर सगल कर सो वह धनवंता हो क्या को कर वह जहाँ सबके जिसका जी आदर वह हाथ सूरा जे को कहा वह प्रभ की कला बिना कह दावे जे को हो पैदातार तिस देन हार जाने गावार जिस गुरु प्रथा टूटे हो रोग नानक हो जन सदा रोग जो मंदिर को था मैं थमन त्यो गुरु का शब्द मन असमण जो पाखाण नाव चढ़त रहे प्राणी गुरु चरण लगत नित रहे जो अंधकार दी पग प्रगास गुरु दर्शन देख मन होए विगास जो महा दियार में मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की पाछ तूर नानक की हलो चापूर मन मूर्ख काहे बिललाई पूर्व लिखी का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देव हार अवर त्याग तुम तसे जितार जो कि ग्रह सोय सुकमान बुला काय प्रय अजान कावन बास आय चेरा संग लपट रहो रत लो भी पतंग राम नाम जप ते माहे नान प्रसे तीगर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया अज अब मान ले हो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद खेप संत संचाल और त्याग की क्या जंजाल तन तन का है सबको ए मुख उजल हर दर गए सोए व्यापार बिल्ला व्यापार नान का सद बुलहार चरण सार के दो पियो हर प्रसाद को अपना जियो सार की दूर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान साध सेवा बड़ भागी पाई है साध सिंह हर कीर्तन गाई है अनक बिगंते साधु रख हर गुण गाय अमृत रस जाख ओट गही संत दरियाया सारा भूख नान थी पाया मृतक को जीवाल हार भूखे को देवत यदार सर्व निदान जाके दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लैना पाहे सबके जिसका करना जोग तिस बिन दूसर हुआ।

ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक का मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक के नर मंद्रित, ठाकुर को सेवक जार संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राख निंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु धार है, नान सो सेवक साथ साथ समार है, अपने जन का प्रदाता कर, अपने सेवक की तरफ पर रखकर, अपने दास को दे बढ़ाए, अपने सेवक को नाम जपाए, अपने सेवक की आपत रख है, ताकि एकत मित कोई ना रख है, प्रभु के सेवक को कौन ना पूछा, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नान सो सेवक दैन दिन से प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रख है, प्रसम कर लश्कर कुट रख है, जिसका सास न काट दिया, ताको राख देख रखात, मानस जपन करत वो बात, जिसके करत बिरथ जात, मारन राख वरण कोई, सर्वजिया का राखा सोई, काहि सोच कर रे प्राणी, जप नान प्रभ अलग बिनाणी, बारंबार बार प्रभ जपिया, पी अमृत मंत्र द्रपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, जिसकी चवर नाही दिटाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख नाम का संग, नाम रस जो जंत्र तानी, मंत्र नाम है नाम समान, उठत बैठत सोवत नाम, तो नानक जन कह सदकाम, बोलो जज जे बा जन रात, प्रभु अपना जन की नी रात, प्रह भगतम की जाय, प्रभु अपने चो रह चुमाय, जो होवा होवत जाने, प्रभु अपने का हुक्म जाने, जिसकी महिमा कौन बखानू, जिसका गुण का एक न जानू, आठ प्रहर को पूछा है दूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिरकी उठ लहे, मन तनि अपना तिन जन दे, जिन जिन अपना प्रभु बचाता, सो जन सर्व थोक का दाता, जिसके सारण सर्व सुपावे, जिसका दर्श सब पाप मिटावे, आवर्ष्यानम सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आमन जान ना होगी तेरा, नानक तिस जन के, पूजो सद पैरा चलो, सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका ना हो, जिसका संग सिख उतर है, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर सिखी करे प्रतपाल, सेवक हो गुर सदा दयालु, सिख के गुर दुरमत मल ही रहे, गुर बचनी हर नाम उतरे, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हट है, सतगुर सिखो राम तंदे, गुर का सिख गुरबागी है, सतगुर सिखा हालत पलत सुवारे, नान सतगुर सिखो निजी नाल समारे, गुर के ग्रह से जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह है, आपस को कर कतना जनावे, हर हर नाम हृदय दियावे, मन भी चय सतगुरु के पास, सेवक के कार्य राज, सेवा करत हो निकामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नान सो सेव गुरु के मतले, बीच बीच में गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर के गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाऊ, अनेक बार गुरु को बल जाऊ, सर्व निदान जिये का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म ब्रह्मराता, ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कज ब्रह्म, सहज ज्ञान प्रया ना जाई, नानक ऐसा गुरुवर बाकी पाइया, सफल दर्शन पेगत पुनीत, पारसत चरणगत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दीर्घ गवे, सुन कर बचन करण आघाने, मन संतो का तंपति आने, पूरा गुरु यख जाका मंत्र, अमृत दिश बेका हो संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानी सुभावे तिसले मिलाए, देवा एक सतनी, सात पुरख पूरन विवेक, काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोत्र परम निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किरा न पाए, आदिक भगत बंधन नित कराए, चरण कम हृदय सिमरा, सदबलहारी सतगुरु अपने नाम, जिस पर साध ऐसा प्रभु जपने, एहो हरत पावे जन कोई, अमृत पीवा अमृत होए, उस प्रक का नाय करे विनाश, जाका मन प्रगटे गुणताठ, आज पैर हर का नाम रे, सच उदे सेवा को दे, मो माया का तुम न ले, मन में राख हर हर एक, अंधकार जीव प्रगा से नान, प्रभो दुखता ते नाशे, तब तुम आहे ठान वरताई, आनंद भया दुख ना ते पाई, जन्म मरण के मिटे अंधे से, साधु के पूर्ण उभरे से, हो चुका निर्भव हो बसे, सकल व्याध मनते कहने से, जिसका सात कृपा दारी सात जपना मुरारी चित पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जासु सरवन निर्गुण आप सुरगुण भी ओई कला दार चंगली बोई अपने चरित प्रभ आप बनाए
अपनी कीमत आप ही पाई। हर बिंदु जाना ही कोई सर्वजनंतर एक कोई और पुत्र व्यारूप रंग भय प्रकाश साध कै संग रच रचना अपनी कलदारी अनेक बार नानक बलहारी। सलोक सात न चाल बिन भजन विख्या चार हर हर नाम कमावना नानक देव तन तारक परी संत दिनामिन क्रोध विचार एक सिमरनाम आधार अवर उपाव समीत विचारो चरण कम नृत में उदारो करण कारण सो प्रतमृत दिन कर गहो नाम हरवत एहो तन संचो हो भगवंत तंत दिनाका निर्मलमंत एक आचरा को मनमाही सार्व रोग नाम जाय जिस तन को चार

करनी सासो बाप जहर की सरणी अनुकू पावी रोग न जाय रोग मिटाय हर ओ बदलाय सर्व निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगे प्रमाण मन प्रबोधो हर कह दाय दै दिस दावत या बेठाई ताको बिंदा लागे कोई या कर दे बचाय हर तोई तल तांती ठंडा हर नाओ सिमर चिमन सदा सुख पाओ ओ बिजय पूर्ण को आस भगत भाई आत्म प्रगाशु चित कर जाय बसे अवनासी को नान काटी जम फांसे तद विचार कह जम चाचा धर्म रैसो काचू काचा आवा गौन मिट्टी प्रति आप त्याग शरण गुरुदेव एव रतन जन्म का हो उतार हर हर चिमन प्राण उदार अनिकु पावना चौकन हारे सिमर शास्त्र वेद विचार हर के भगत करो मन लाए मन मन चित नान फल पाए सगना चाल तेरे दराम तू क्या लपटा वह मूर्ग मनाम श्रुत मीत कुटम अरमंता इनते कहो तुम कौन सुनाता राज रंग माया विसार इनते कहो कौन छुटकार हस हाथी रथ द्वारी झूठा डंप झूठ पाचारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम विसार नान पताना उर्के मतुले यारी भगत बिना बोटू विचार हर के भगत करो मन नीत निर्मल होय तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के फिर बिक जाहे आप जपो औरा नाम जपावहु सुनत कह तुरत गत पाओ सार भूत सत हर गुनाओ साधु सुभाई नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर चमार मिन जाय हो मैं बिक पैल होय अचिंत कसे सुखनाल।

एको जपे को चालाय एक शिमरे को बनयाहि एकच के कुन गावनंत मंत्र जाप एक भगवंत एको एक ही क्यारप पूरण पूर है प्रव्याप अनेक विस्तार एक थी भई एक राज प्राच गई मंत्र नियंत्र एक प्रभुराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता चलो फिरत फिरत प्रव्याया प्रिया तो शरणाय नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाय अपनी जाच जिन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हरटाम साध जनाखी मांगो तूर पार ब्रह्मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गाओ सास सास पर तुम्हें दियाओ चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की रंतनीत एक ओटे को आधार नारक मांगे नाम प्रभुतार प्रभु के दृष्ट महासुख होए हर रस भावे बिरला कोई जिन चाकिया छे जिन तृप्तारी पूरन पुरुष नहीं डोला नहीं सुबर प्रे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग परे चरण आंत त्याग अंतर प्रगा संद लीलाग बड़ भागी जप्या प्रभु नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी वही सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया हिच पुनि सरदा सब पूरी रव रहा सब संग हजूरी जिसका साथ मिलिया मिलाए नान भक्ति नाम समाए सो कबूतरे जी गाल ना बाने सो कबूतरे जी की या जान सो कबूतरे जिन सब की दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगर मैं राख है गुरु प्रसाद को बिल्ला राख है सो क्यों बिसरे जे भिक्ति काट है जन्म जन्म का टूटा कांड है गुरु पूरा तथे बुझाया प्रभ अपना नान कंती आया साजन संत करो ये काम आंत याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो और नाम जपावो भगत भाई त्रिय संसार बिन भक्ति तन खोसी चार सर्व कल्याण सुख निंद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का हो तनाश नानक नाम जपो गुणतास उपजे प्रेत प्रेम रचा मंथन अंतर ए सुहाओ नेत्रो पेक दृत सुख होई मन विषय साध चरण दोई भक्त जना कै मंथन रंग बिल्ला को पावे संग एक वस्त दीजे करमया गुरु प्रसाद नाम जप लिया आके उपा कहीं न जाए नानक रहा सर्व समाय प्रभु बख्शन दे दीन दयाल भगत वसंतला कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा गर्त प्रतपाल आद प्रभु कारण करताल भगत जना के प्राणदार जो जो जपै सो होय पुनीत भगत भाई लावे मन जीत हम निर्गुण यार नीचे दान नान तुमरी चरण पुरुष भगवान सर्व बैकुंठ मुकुट मोक्ष बाई एक निमक हर के गुण गाई अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम के कथा मन बाई मोह भोजन का प्रसंगीत रचना जपते हर हर नीत भली सो

पूरे गुरु का तुनु उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीक सास सचमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंदु आसनी तुत्या को उतरंग संत जनाके दूर मन मांग आप छोड़ विनती करो साध संग अगन सागर तरो हार तन के पल्ले पंडार नान गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पद परमानंद नरक निवार उदार जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग एक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक सार के वतन अमलिक लाल एह रतन तुरंत कमाओ तो हो तू उदार आप त्रैलोक नितार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहनुआ जय सुनतन अनद करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महंत के माथे नार उदरे तिन के साथे सारण जोग सुनतर नि आए कर कृपा प्रव्याप मिलाए मिट गए बार पे सबरेन अमृत नाम साथ संग लैन सो प्रतन पे गुरुदेव पूरन हो सेवक की सेव आल जंजाल विकार तेरा तेरा नाम सुमरटना कहते कर प्रसाद दया प्रतारी नारक निबिही के प्रभारी प्रभ के उस्तद ग्रोटन प्रीत सावधान एकागर जीत सुख मन सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताके पूर्ण होय प्रधान पुरख प्रगट सबलोय सब ते ऊंच पाए स्थान बहना होवे आवन जान हार तन काट चले जन सोए नान जिस है प्राप्त होए केम सांत्र नौनिद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबका मद सगल से उदास सुंदर चतुर तत् का बेताल समदर्शी एक दृष्टि था एह पाल तिस जन का मुख बने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैं ता कीरत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र भेद बखाणी सगल मतांत केवल परनाम गोविंद भगत का मन विश्राम कोट अपराध साध सुमित संत कृपा ते जमते चुट जाकै मस्तक कारम प्रभु पाए साध शरण नानक से आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिजन आवै हर प्रचीत जनम मरंता का दुख निवार दुर्लभ दे तत्काल उद्धार निर्मल शोभा अमृतता की बानी एक नाम मन माय सुमारे दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के ब्रह्म सब ते ऊंच ताके शोभा बानी नानक एह गुण नाम सुख मानी

सुखमनि सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना कै मन विचराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

ताहर नाम समान जिसके वत सोई प्रभ जाने जिसनो दे सो पाई वस्त अनुपत अगम गोचर गुर पूरा अलख लखाई जिन एह चा